0: This is Shraddha Kapoor and you're listening to Tune India Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: नमस्कार, मैं हूं जिमी शेरगिल और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
1: जब नजरें मिली बेवजह पहली बार, जब इत्तेफाक से मुलाकात हुई अगली बार, तो ढूंढने लगा बहाने मिलने।

जब तेरी मुस्कान से रोशन हुई मेरी डगर, जब तेज हुई तुम्हारी सांसें और तेरे नैनों में था डर, तो संभाला था मैंने खुद को मगर तुम ही बताओ दिलबर, कैसे ना होगा इश्क तुमसे, क्यों ना होगी मोहब्बत तुमसे।

0: हिंदी हिट्स न्यूज रिदम डिवाइन।
1: हेलो, मैं मोनी रॉय बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।

गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे, आज भी तुम पे है नजर मेरी, आज भी तुमसे ही नजारे हैं। जिंदगी मिल भी गई और कुछ मुकर भी गई, उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं।

0: कोयल फड़क के मस्त करे जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे तबले की था।
1: शामे फुरका शामे फुरका।

मैं बिनू ढिल्लो तुम सुन रहे हो ट्यून इंडिया रेडियो। ट्यून इंडिया रेडियो की एंटायर टीम ने मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज कीप लिसनिंग ट्यून इंडिया रेडियो।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. Vijay's TVK seeks support from ADMK and DMK allies in Tamil Nadu elections. Mamata Banerjee's refusal to resign raises questions about President's rule in Bengal. Australia plans arrests for ISIS-linked families returning to the country. The government commits $7 billion to boost fuel stockpiles and create reserves. Trump orders military to pause efforts to reopen the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.
3: 24 hours of non-stop anthems.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब हर चीज अपने समय पर ही फल देती है, धैर्य रखिए। सोचिए क्या हम जल्दबाजी में फैसले तो नहीं ले रहे? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
5: सत श्री अकाल जी, मैं हूँ रोशन सिंह, आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, सुनते रहिए।
0: सलाम नमस्ते दोस्तों, दिस इज तेजस्विनी एंड आई एम बैक विद येट अनदर सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एंड टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स फॉर ट्रू इनर पीस। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत बार सुना होगा और हम सब ने इस एक्सप्रेशन को अपने डे टू डे लाइफ में कई बार यूज भी किया होगा, पर क्या किसी ने इसका मायना, इसका मीनिंग, आई मीन द रियल मीनिंग ऑफ इट जानने की कोशिश की है? फॉरगिवनेस इज इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगेटिंग इज डेफिनेटली नॉट फॉरगिविंग। इट्स जस्ट फ्रीजिंग योरसेल्फ फ्रॉम पेन, गिल्ट एंड एंगर एट योरसेल्फ और मे बी अदर्स। बट इफ यू आर लुकिंग टू हील एंड सेल्फ लव इज वॉट यू बिलीव इन, then instead of freezing your emotions under the blanket of forgive and forget, why don't we free ourselves just by learning how to forgive? Not only ourselves, or rather not only others, but also ourselves, and be at peace, grow with emotional healings, क्योंकि कुछ wounds aren't visible, कुछ बेड़ियाँ जो होती है ना वो physical नहीं होती। So resentment, anger for what has happened to us in our personal ya fir professional life stays buried inside of us, inside of most of us, if not all, until it turns to guilt for letting life get to us. And then that moves on to perhaps mental health breakdowns, mental health issues more often than not, as we struggle to escape the resentment and anger until we choose to forgive ourselves, not by making excuses, but by understanding the reasons or the circumstances that led us to accept unfairness in our lives. And that finally sets us free. Kafi bol liya, but what I am trying to say here is I am going to actually perhaps talk about how to best forgive ourselves and others. So by saying that, forgiveness is often misunderstood. It's not about excusing hurtful behavior or forgetting what has happened. It's about choosing peace over pain, whether it's forgiving someone who hurt you or even forgiving yourself. अपने आप को भी forgive करना एक बहुत बड़ा task है, for a mistake that you can't undo. The act of forgiveness is one of the most courageous and healing decisions you could possibly make, especially forgiving yourself. अपने आप को माफ करना, इट्स अ वेरी हीलिंग एंड अ वेरी करेजियस डिसीजन. मोर ऑफन देन नॉट हम घुटते रहते हैं बिकॉज वी हैव डन समथिंग, वी नो वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, इट हैज इम्पैक्टेड समवन एंड देर इज नो गोइंग बैक. सो आज मैं कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना चाहूँगी आप सब लोगों के साथ, मे बी अ फ्यू वेज ऑफ फॉरगिविंग आवरसेल्व्स, प्रैक्टिकल, इमोशनल एंड मे बी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स. Let's see what I can come up with today.

0: मैं भूलने लगी हूँ।
1: कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर भूल भी गई तो शुरू से प्यार करेंगे।
2: दिस इज ट्यून इंडिया रेडियो एंड इट्स टाइम फॉर द न्यूज हेडलाइंस।
3: Good afternoon, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. VJ's TVK

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. Vijay's TVK seeks support from ADMK and DMK allies in Tamil Nadu elections. Mamata Banerjee's refusal to resign raises questions about President's rule in Bengal. Australia plans arrests for ISIS-linked families returning to the country. The government commits $7 billion to boost fuel stockpiles and create reserves. Trump orders military to pause efforts to reopen the Strait of Hormuz. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। ग्रैंड बर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: This is the station with all your music in one place.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब भगवान को सिर्फ दुख में याद मत करो, सुख में भी याद रखो। सोचिए, क्या हम खुशियों में भी ईश्वर को याद करते हैं? आज सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
5: आई एम श्रीदेवी एंड यू आर लिसनिंग टू ट्यून इंडिया रेडियो।

0: बटर बॉम्ब सोडा अड़वे रॉकेट गए फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट अरे बारा बन मेरे जाई सबन ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर
1: फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू फू

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TVK Chief Vijay meets TN Governor Alakar ahead of assembly elections. Tensions rise as bulldozers demolish structures in Kolkata's new market area. Police chief reassures Melbourne community after another business fire. Arrests are planned for ISIS-linked families returning to Australia. The US-Iran ceasefire is holding for now as Trump seeks to finalise a deal. That's all for now. Stay tuned for more.
2: Hi, this is Aamir Khan and you're listening to Tune India Radio.
3: All the hit music on the greatest station.
4: RadioTuneIndia.com.au. Playing your music. 24/7.
5: Namaskar. आइए सुनते हैं आज का रहीम का विचार। कभू न प्यासे मरी परे सागर के किनारे, रहीमन प्यासा मरी गया नैनन के जल मारे। मतलब कभी कभी समाधान पास होते हुए भी हम अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, क्या हम अपने आसपास के समाधान को पहचान पा रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
6: हेलो, मैं दर्शन कुमार और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।

0: बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TVK Chief Vijay meets TN Governor Arlekar ahead of assembly elections. Tensions rise as bulldozers demolish structures in Kolkata's new market area. Police chief reassures Melbourne community after another business fire. Arrests are planned for ISIS-linked families returning to Australia. The US-Iran ceasefire is holding for now as Trump seeks to finalize a deal. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक, टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: संगीत में सबसे आगे ट्यून इंडिया रेडियो।
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का रहीम का विचार। छोटन को मत कीजिए जैसे निंदक ठौर, रहीमन कहे बिनु निंदक मिलत न सत्य की ओर। मतलब आलोचक से सीख मिलती है, उसे छोटा न समझो। सोचिए, क्या हम आलोचना से भागते हैं या उसका स्वागत करते हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
5: हाय, दिस इज ईशान एंड यू आर लिसनिंग टू ट्यून इंडिया रेडियो।
0: सलाम नमस्ते दोस्तों, दिस इज तेजस्विनी एंड आई एम बैक विद येट अनदर सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। एंड टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स फॉर ट्रू इनर पीस। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत बार सुना होगा और हम सब ने इस एक्सप्रेशन को अपने डे टू डे लाइफ में कई बार यूज भी किया होगा, पर क्या किसी ने इसका मायना, इसका मीनिंग, आई मीन द रियल मीनिंग ऑफ इट जानने की कोशिश की है? फॉरगिवनेस इज इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगेटिंग इज डेफिनेटली नॉट फॉरगिविंग। इट्स जस्ट फ्रीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम पेन, गिल्ट एंड एंगर एट योर सेल्फ और मे बी अदर्स। बट इफ यू आर लुकिंग टू हील एंड सेल्फ लव इज वॉट यू बिलीव इन, then instead of freezing your emotions under the blanket of forgive and forget, why don't we free ourselves just by learning how to forgive? Not only ourselves, or rather not only others, but also ourselves, and be at peace, grow with emotional healings, kyunki kuch wounds aren't visible, kuch bediya jo hoti hai na, wo physical nahi hoti. So resentment, anger for what has happened to us in our personal ya fir professional life stays buried inside of us, inside of most of us, if not all, until it turns to guilt for letting life get to us. And then that moves on to perhaps mental health breakdowns, mental health issues more often than not, as we struggle to escape the resentment and anger until we choose to forgive ourselves, not by making excuses, but by understanding the reasons or the circumstances that led us to accept unfairness in our lives. And that finally sets us free. Kafi bol liya, but what I am trying to say here is I am going to actually perhaps talk about how to best forgive ourselves and others. So by saying that, forgiveness is often misunderstood. It's not about excusing hurtful behavior or forgetting what has happened. It's about choosing peace over pain, whether it's forgiving someone who hurt you or even forgiving yourself. अपने आप को भी forgive करना एक बहुत बड़ा task है, for a mistake that you can't undo. The act of forgiveness is one of the most courageous and healing decisions you could possibly make, especially for forgiving yourself. अपने आप को माफ करना, it's a very healing and a very courageous decision. More often than not, hum ghutte rehte hai because we've done something, we know we've done something wrong, it has impacted someone, एंड देर इज नो गोइंग बैक. सो आज मैं कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना चाहूँगी आप सब लोगों के साथ, मे बी अ फ्यू वेज ऑफ फॉरगिविंग आवरसेल्व्स, प्रैक्टिकल, इमोशनल एंड मे बी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स. लेट्स सी व्हाट आई कैन कम अप विद टुडे.

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TVK Chief Vijay meets TN Governor Arlekar ahead of assembly elections. Tensions rise as bulldozers demolish structures in Kolkata's new market area. Police chief reassures Melbourne community after another business fire. Arrests are planned for ISIS-linked families returning to Australia. The US-Iran ceasefire is holding for now as Trump seeks to finalise a deal. That's all for now. Stay tuned for more.
2: Hi, this is Amir Khan and you're listening to Tune India Radio.
3: Namaskar, aaiye sunte hain aaj ka Rahim ka vichar. Jaise tarovar mool ko siche barambar, फल फूल सहजे आवे करे गुणों की धार. मतलब जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से फल मिलते हैं, वैसे ही सद्गुणों को अपनाने से जीवन फलता है. सोचिए, क्या हम अपने गुणों की जड़ों को सींच रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे.
4: हाय, मैं हूं सोनू सूद और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो. सुनते रहिए और मजे लेते रहिए.

समय भूल रहा हूं, तेरी फूटी किस्मत की चाबी वक्त के ताले से मिलने वाली है। हैप्पीनेस की सुनामी तेरी डेस्टिनी में खुलने वाली है। बदलने वाला है तेरा टाइम और बिना बजट की भी ये फिल्म खुलने वाली है। मैं समय बोल रहा हूं।

गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good morning. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. TN Governor asks TVK Chief Vijay for proof of majority MLA support. West Bengal Chief Minister refuses to resign, claiming conspiracy behind election loss. Arrests are planned when ISIS-linked families return to Australia. Tax breaks and super changes will kick in on July 1st, with more budget changes expected. Oil prices drop and stock markets rise after reports of a deal to end the Iran war. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.
3: This is the station with all your music in one place.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब हर चीज अपने समय पर ही फल देती है, धैर्य रखिए। सोचिए, क्या हम जल्दबाजी में फैसले तो नहीं ले रहे? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
5: हाय, मैं हूं मंजूर सिंह और आप सुन रहे हैं मुझे ट्यून इंडिया रेडियो पर।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good morning. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. DMK has rejected AIADMK's overtures for government formation in Tamil Nadu. Chandranath Rath, a close aide of Suvendu Adhikari, was shot dead in West Bengal. Women and children with IS links are excited to return to Australia, calling it like paradise. Albanese's budget is expected to remain stable despite Trump's recent comments. Oil prices are plunging as markets surge on reports of a potential US-Iran deal. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.
3: Only your take in hit music. RadioTuneIndia.com.au.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का विचार। Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. मतलब महानता गिरने में नहीं, हर बार उठ खड़े होने में है। सोचिए, क्या हम हार से घबराते हैं या उससे सीखते हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
5: Hi, I'm Akshay Kumar.
6: And I'm Nusha Dharucha. And keep listening to Tune India Radio. Salaam to Namaste. Salaam to Namaste.
0: Salaam to Namaste. Namaste. Salaam Namaste, dosto. Welcome back to yet another segment of Straight from the Heart with Ahilya. The journey of 1,000 miles, they say, starts with the first step. Hena, but how do you know which way to step? And how hard or lightly to walk? The hardest part of any journey, isn't the distance. It's just trusting that first step. How do you know where to go, whether to walk gently or boldly comes after? Ye phrase, na, the journey of 1,000 miles begins with a single step. It sounds simple enough, ne? Even motivating. Kafi inspiring hai ye, ke na chalo, chal padho. But what no one ever talks about is the uncertainty that comes before that step. कैसे पता चलता है कि कहाँ से शुरू करें? कैसे पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, वो क्या हमारे लिए सही होगा? And perhaps, most importantly, how do you know whether to move पूरी ताकत लगा के या फिर हौले हौले? Because starting is not always about confidence, at least in my case. Sometimes it's about listening to myself in the middle of all that uncertainty. You know, I get all pepped up by people talking about like traveling, this, that and everything. I've had this happen to me before. Got so inspired that I set out and I probably did not do my research enough that I actually regret that particular journey. And I'm talking about a physical journey. You know, going to a different country, just because I was super inspired. Anyway, I'm talking about life in general and not reaching a destination or going away on a holiday. But that uncertainty that was there, that was kind of telling me to pull back and I was telling myself, I'm not fully prepared for this. I'm doing this by myself in a strange country. I'm not prepared for this. But somehow I was so inspired by all these podcasts you listen to and all these shows that you watch. And you are like, main kar sakti hoon. Yes, sometimes had everything gone all right with me, had I not fallen sick and this and that, had I not lost my luggage and all of that, I would have been fine. But because a few things happened to me, I just thought to myself, I should have listened to that voice in my head. Life aise dekha jaye, main jab jis journey ki baat kar rahi hu na, I'm talking about life. The example that I gave you was a small example about a leaf from my book. Or a page from my book, you could say, Book of Life. एनीवे लाइफ इज़ फुल ऑफ बिगनिंग्स एनी वेज, है ना। स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका करियर चेंज हो सकता है, या आपने किसी तरीके का लॉस एक्सपीरियंस किया हुआ है जिसके बाद आप हील कर रहे हो। यू नो अ लॉस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट लॉस। और आपने जी जान लगा के कुछ स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जो मर्जी, और वो उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ जिस हद तक आपने उसको इन्विसाज किया था, जिस हद तक आपने सोचा था। और इट सिंपली कुड बी अबाउट चूजिंग टू बिकम अ बेटर वर्जन, अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू नो लॉन्गर वांट टू बी ये यू नो लाइक द वे यू आर एंड यू वांट टू डू और यू वांट टू बिकम द सेल्फ दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी एंड एडमायर्ड इन अदर्स। यू वांटेड दैट दोज क्वालिटीज एंड यू सेट आउट ऑन अ पाथ टू एक्वायर दोज क्वालिटीज एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये भी हो सकता है। जो मर्जी बोलो, नए नए बिगनिंग्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत बार मर्की यानी नॉट क्लियर होते हैं। एंड एज ह्यूमन बीइंग्स वी वांट सर्टेनिटी बिफोर, वी वांट टू बी सर्टेन बिफोर वी मेक एनी काइंड ऑफ अ मूव। वी वांट गारंटीज इवन बिफोर द रिस्क अपीयर्स ऑन द होराइजन, है ना। दैट्स व्हाई इंश्योरेंस इज सच अ पॉपुलर प्रोडक्ट। एनीवे लाइफ जब होती है ना, इट रेयरली कम्स विद अ GPS और इट रेयरली ऑफर्स यू मैप्स। इट ऑफर्स इंट्यूशन, इट विल ऑफर यू एक्सपीरियंस एंड लाइक लिटिल बर्स्ट्स ऑफ करेज, बट नॉट मैप्स। तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज कि कैसे पता चलता है कि जो स्टेप ले रहे हैं वो सही दिशा में ले रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन हियर, जस्ट बीइंग अवेयर कि जो भी स्टेप ले रहे हैं वो सही स्टेप है या नहीं। तो इसी बात को आज एक्सप्लोर करेंगे। और ये मुझे किसी मूवी से या कहीं और से नहीं आया, ये मैं खुद से ही सोच रही थी बिकॉज आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट ऑन अ व्लॉग, नॉट पॉडकास्ट, अ व्लॉग ऑन this couple that I follow, and they had gone to Thailand, and they were like, you know, procrastinating about so many things, and then they went in and out of their, you know, journal of memories where they said, oh, we did this in Japan, we did that in Vietnam and all of that. And I was like, hello, I want to do all of this. And my husband said, after I said that to him, he said, yeah, but you have to, like, you know, have the courage to do it, and the first step is to do proper research if you're going to do it by yourself. चलो फैमिली के साथ जा रही हो तो नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ देन रिसर्च इज़ योर फर्स्ट स्टेप। एंड दैट ब्रॉट मी इनटू दैट थिंग के हाँ यार, लाइफ की तरह ही ना, एवरीथिंग रिक्वायर्स रिसर्च, है ना। बट फिर भी अनसर्टेनिटी तो है।

बाहर तक सुनाई देती है। इनफैक्ट वही आवाज़ सुनाई देती, कुछ और सुनाई नहीं देता, कुछ और दिखाई नहीं देता। सो विभीषणा डिड दैट, उन्होंने सुनी अपनी अंदर की आवाज़। ही चोज़ टू वॉक अवे फ्रॉम एवरीथिंग फेमिलियर, हिज होम, हिज आइडेंटिटी, उनका जो पोजिशन था, एंड ही डिसाइडेड टू अलाइन हिमसेल्फ विद वॉट फेल्ट राइट फ्रॉम विद इन। उन्हें तब नहीं पता था, आई नो इट्स अ स्टोरी ऑफ माइथोलॉजी, बट इफ़ यू वर टू लुक एट इट एज कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्टोरी, ही डिडंट नो अबाउट द फ्यूचर हेल्ड। ही ओनली न्यू कि अगर वो वहीं रहा जहाँ पे वो था, वो कभी भी अपने आप से नज़र नहीं मिला पाता। लाइफ में ना दोस्तों, जब आप उस मकाम पे पहुँचो जहाँ पर आप अपने आप से नज़र नहीं मिला सकते, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिटरली, यू कॉन्ट लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, यू जस्ट शाई अवे फ्रॉम लुकिंग एट योर सेल्फ, एंड दैट हैपन्स। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग इन योर लाइफ हैपन्स दैट मेक्स यू थिंक, आई कॉन्ट लुक एट माई सेल्फ इन द आई। दैट्स द एसेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेप। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नोइंग वेयर यू आर गोइंग, इट्स अबाउट रिफ्यूजिंग टू स्टे वेयर यू आर, वेयर योर ट्रूथ, आपका जो अंदर का ये है ना सच जो है, इट डजेंट थ्राइव, इट काइंड ऑफ स्टार्ट थ्रॉटलिंग यू इन रियल लाइफ। आप सोचो, थिंक ऑफ समवन हू स्पेंट इयर्स इन अ करियर दैट लुक्स सक्सेसफुल ऑन द आउटसाइड, प्रमोशंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और क्या बोल सकते हैं, रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट्स, एंड एवरी डे फॉर दिस पर्सन फील्स हैवी, एवरी अचीवमेंट फील्स एम्प्टी। प्रमोशंस कम विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। द टर्निंग पॉइंट डजेंट कम फ्रॉम अ परफेक्ट न्यू अपॉर्चुनिटी अपियरिंग ऑन दी होराइजन, इट विल कम फ्रॉम अ क्वाइट रियलाइजेशन के दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट, दिस कैन नॉट बी इट। जैसे मेरे साथ हुआ था, आई हैड एवरी थिंग गोइंग फॉर मी, आई हैड एन अमेजिंग जॉब, माई ड्रीम जॉब, एंड आई वॉज द इट पर्सन, बट आई केम टू अ पॉइंट दैट आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, नो दिस इज नॉट इट, आई इट कॉन्ट बी इट। आई नो आई लव दिस जॉब, दिस इज सपोज टू बी माई ड्रीम जॉब, आई रियली शुड बी कंप्लेनिंग बिकॉज हु इज गोइंग टू लिसन इफ आई डू दैट, नो वन इज गोइंग टू इवन बिलीव मी इफ आई से कि भाई मुझे ये नहीं करना है, दे विल बी लाइक ये नहीं करना तो क्या करना है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। बट दैट मोमेंट ऑफ ऑनेस्टी ना, वेर आई टोल्ड माई सेल्फ कि भाई मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगी, दैट वॉज अ रियल बिगनिंग फॉर मी।

And you're back on Straight from the Heart with Ahilya, and we are talking about move lightly when you're exploring that journey of 1,000 steps. अगर आप किसी मूव से या किसी चीज़ से दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स फेमिलियर, इस चीज़ से डरते हो ना, या एक ही वो चीज़ है दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्या बोलते हैं, हाउ डू आई पुट दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम इट प्रॉपरली, देर आर मोमेंट्स व्हेन यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन, बट आपको डर है कि आई डोंट नो, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं वो करना है, पर मुझे पता नहीं क्या होगा. यू नो दैट फियर, इट डीलेस मोमेंट. समवन लाइक मी विल ओवरथिंक थिंग्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग्स, और आई विल जस्ट स्पीक टू माई पेरेंट्स एंड और माई ब्रदर और माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर और माई ब्रदर इन लॉ और माई हस्बैंड. आई विल सीक रीअश्योरेंस फ्रॉम हूएवर इज विलिंग टू लिसन टू मी. तो वैसे ही ना, इफ़ यू ओवर थिंक, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, सीक रीअश्योरेंस मेरी तरह, देन सर्टन जर्नीज यू नो दे रिक्वायर करेज मोर देन क्लैरिटी, है ना. हेजिटेशन कभी कभी विजडम होता है, जब आप हेजिटेट करते हो, बट समटाइम्स इट्स जस्ट आपका डर दैट्स डिस्गाइज्ड एज कॉशन, और आप सोचते हो नहीं, आई एम बीइंग कॉशियस. एक कहानी बताती हूँ आपको, देयर इज एन ओल्ड स्टोरी, राइट, आपने सुनी होगी और मैंने इससे पहले भी बताई है, अबाउट अ यंग ट्रैवलर स्टैंडिंग बिफोर अ नैरो ब्रिज. एक डीप रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज है, वो बहुत नैरो है, और वो इतना लाइक वो देखता है और वो डर जाता है. इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, हिमाचल में विच इज़ माय हस्बैंड कम्स फ्रॉम, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर देयर आर दीज टाइनी टाइनी ब्रिजेस एंड दे आर ओवर अ चैज्म, दे आर ओवर वैलीज एंड दे आर ओवर रिवर्स, डीप रिवर्स, एंड डर लगता है. मे बी ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वन सच ब्रिज एंड ही हेजिटेटेड फॉर आवर्स, अफ्रेड दैट द ब्रिज वुड कोलैप्स एंड नॉट टेक हिज वेट. और यू नो जो बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं ब्रिज के किनारे या रिवर के किनारे, वैसे ही कोई देख रहा था उसको, एंड ही सेड कि द ब्रिज ओनली बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन यू प्लेस योर वेट ऑन इट. समझ में आया, तभी स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा जितना जब आप उस पर अपना वजन डालोगे. द ट्रैवलर इवेंचुअली क्रॉस्ड एंड रियलाइज दैट द ब्रिज वॉज स्टेबल ऑल अलॉन्ग. समटाइम्स द पाथ becomes clear only after you have committed to, like, you know, crossing that bridge or crossing that path. उससे पहले आप पता नहीं हज़ार चीज़ें सोचते रहते हो कि ये होगा तो वो होगा तो जो है अभी वो अच्छा है, बाद में पता नहीं क्या होगा. एवरी वन ओस रोज़ा पार्क्स, सो आई विल टेल यू कि हिस्ट्री में एक कहानी है उनके बारे में. शी वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन, यू नो रोज़ा पार्क्स, द ब्लैक लेडी, फॉर द वॉन्ट ऑफ अ बेटर वर्ड, द अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हु वॉज सिटिंग इन अ बस. द बस ड्राइवर वॉज वाइट, द पीपल अराउंड वर वाइट, एंड शी वॉज सिटिंग इन द बस, एंड देन अ वाइट पर्सन एंटर्ड एंड द ड्राइवर सेड टू हर टू गेट अप एंड गिव अप हर सीट फॉर दिस पर्सन. But she was fed up with this kind of behavior towards the black Americans. So she said no. Now imagine that moment. 100% were comfortable nahi hua hoga. It definitely was not safe because you could get killed for being like that, for rebelling against the system. And usko koi guarantee nahi thi ki usko, you know, kuch hoga nahi. She could have waited for a better time when there were more black Americans sitting around or things like that, or if she had someone else to make sure that she was safe, she could have waited for a safer moment or someone else to act first, because sabhi sochte the, sabhi iske bare mein baat karte the, par karta koi nahi tha. Sometimes the right step is clear and the only thing that's standing in your way is that fear, ke what if. Uska decision sirf personal nahi tha, but it became such an important point, you could say it became a turning point for such a larger movement. Yeah, फिर another movie, one of my other favorites, Rocky, part one, that is. Rocky isn't the strongest or the most, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, he isn't the strongest or the most skilled boxer, is he? When he's given a chance to fight, everything around him suggests that he will fail. But wo ring mein step anyway, he goes into the ring, not because he's certain of victory, but because he refuses to let that fear decide his next step in life.
दोस्तों, बोल्ड स्टेप्स डोंट ऑलवेज गारंटी सक्सेस, बट दे डू गारंटी दैट यू विल ग्रो आफ्टर यू टेक दैट स्टेप. एंड समटाइम्स द बिगेस्ट मिस्टेक इजन चूजिंग द रॉन्ग पाथ, इट इज बिकॉज ऑफ योर फियर नॉट चूजिंग एनीथिंग एट ऑल. स्टेइंग वेयर यू आर इज द वर्स्ट थिंग यू कुड डू व्हेन इट्स नॉट अलाइंड विथ हु यू आर.

0: You're back on Straight from the Heart with Ahilya, and we are today discussing how the journey of 1,000 miles begins with the first step. The pace matters as much as the direction. You know, a Chinese folklore here, there is a story about a bamboo tree. For years after planting, nothing appears above the ground. You know, farmers generally bamboo trees ka yahi funda hai, wo sprouting mein itna waqt le lete hain. You know, the farmer waters it daily and there's no visible result. Can you imagine? Someone like me will be filled with so much doubt, frustration even, and the temptation is so big, not just to give up, because you don't know kuch ho raha hai ki nahi, koi movement hi nahi dikh raha hai. But deep under the ground, na, the roots are growing deep and strong, and suddenly after years of invisible growth, the bamboo shoots up rapidly. Aur itna fast shoot up hota hai na wo, like kahawat bhi hai na, re itna lamba ho gaya, it's like a bamboo stick. So it must have come from there, because once it sprouts, it just shoots up very rapidly, short time mein. So is स्टोरी या इस कहावत या वॉट एवर यू कॉल इट, दिस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है, जस्ट बिकॉज यू डोंट सी प्रोग्रेस डजेंट मीन नथिंग इज हैपनिंग. सम जर्नीज आर जस्ट नॉट मेंट टू बी रश्ड. इफ यू ऑल रिमेंबर द मूवी कराटे किड, उसमें जो बच्चा है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही इज ईगर टू लर्न कराटे बट ही वॉन्ट टू डू इट क्विकली. He expects action and intensity and visible progress so that he can go and teach the bullies a lesson. But instead, uska teacher na, Mr. Miyagi, if you all remember, Mr. Miyagi, uska naam Mr. Miyagi tha na, I think it was Mr. Miyagi. Anyway, his teacher makes him repeat the same exercise over and over again, simple, seemingly unrelated even, like waxing the car, painting fences, doing his gardening, sab pointless cheeze karne ko bolte hain. And this boy, the hero, sorry, I don't remember his name, the karate kid. Anyway, he feels everything is pointless that he's doing. It's pointless, it's slow, frustrating. But then, wo repetitive actions and everything starts building muscle memory, jo ki kitna important hai. Aajkal bahut sunti hu main muscle memory, jitna main sunti hu mental health ke bare mein and how to preserve it, usko jaan se bhi zyada usko, you know, usko kya kehte hain, sambhal ke rakhne ki baatein hoti hai aajkal. Mental health is everything, waise hi muscle memory भी बहुत सुन रही हूँ. इट्स ऑल अबाउट लाइक डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड स्किल, आई एम थिंकिंग दैट्स व्हाट मसल मेमोरी इज. एनी वे, सो दोज रिपीटेटिव एक्शंस हेल्प्स हिम बिल्ड मसल मेमोरी, एंड द स्लो पेस दैट ही थॉट वॉज डिलेइंग हिज स्किल्स और डिलेइंग हिज ग्रोथ वॉज एक्चुअली शेपिंग इट. क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी आपको हौले हौले चलने को बोलती है, नॉट टू होल्ड यू बैक बट टू how can you say this? Prepare you properly for what is to come. Because in life you can never tell, right? Unless you're prepared, you will not, you know, be able to like deal with what comes. Life isn't only about movement, it's about timing. Some journeys will require you to run, others will require you to walk gently. Stepping lightly is not weakness, it's preparation. So not preparation, because not everything is to be rushed here. Healing requires gentleness. Growth requires patience. Ambition may require intensity. Wisdom lies in knowing कि आप किस emotional state में हो, कौन सी emotional energy आप को is talking loudest to you before deciding your pace. How hard or lightly your step depends on what season of life you're in, what emotional energy is actually coming out of you at that particular point of time in your life. The first step rarely feels certain, but aapko ek direction mil jati hai. Clarity comes after movement, not before. When I was bridge pe जाऊं के नहीं उसी में उसने इतना वक्त गुजार दिया कि उस बुजुर्ग को बोलना पड़ा कि भाई अपना वेट डाल उस ब्रिज पे और देख. पीपल वेट फॉर सर्टेनिटी बिकॉज दे फियर कि गलत किया तो गलती हुई तो स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम आर साइड ऑफ द वर्ल्ड दे फियर मिस्टेक्स. आई थिंक इट्स अ हैंगओवर फ्रॉम कॉलोनियल डेज. आई डोंट नो, हमारे डीएनए में ना डर है कि हम गलतियां करेंगे तो हम पे लाइक लोग हंसेंगे तो सबको पता चलेगा कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ तो वॉट. एनी वे दैट्स अ गुड टॉपिक एंड आई शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल बट सम अदर डे. वॉट वॉज आई टॉकिंग अबाउट? या जर्नी ऑफ 1,000 स्टेप्स. सो मोस्ट मीनिंगफुल जर्नीज आर शेप्ड नॉट वाइल स्टैंडिंग स्टिल बट वेन यू स्टार्ट वॉकिंग, बिकॉज एक्शन क्रिएट्स फीडबैक. एक्सपीरियंस, जब आप एक स्टेप लेते हो दूसरा स्टेप लेते हो आपका मसल मेमोरी में वो एक्सपीरियंस बस जाता है एंड दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इट्सेल्फ द एक्सपीरियंस इट्सेल्फ विल स्लोली गिव यू द फ्रीडम. The first step doesn't need to guarantee the ending. It only needs to begin your story. So, how do you know which way to step and how hard or lightly to move? The answer is simpler than we think. इतना सब कुछ बोल दिया मैंने, सच में आंसर बहुत सिंपल है. स्टेप टूवर्ड्स वॉट फील्स राइट फॉर यू, बिकॉज योर राइट कुड बी अ रॉन्ग फॉर समवन एल्स, बट इफ इट फील्स राइट टू यू देन इट्स ऑनेस्ट, इट्स योर ट्रूथ. मूव लाइटली वेन यू आर लर्निंग, मूव बोल्डली वेन फियर इज दी ओनली बैरियर. और अपने आप को, अपने पेस को ट्रस्ट करो. क्लैरिटी रेयरली कम्स बिफोर मोमेंट, फिर हमको डाउट्स, गैस लाइटिंग और सब कुछ चालू रहता है. इट ओनली कम्स आफ्टर यू मेक मोमेंट. इनफैक्ट इट कम्स थ्रू मोमेंट, बिकॉज द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स इज इन बिल्ड फ्रॉम सर्टेनिटी. इट्स जस्ट बिल्ड by taking one step and following it up by another. So this brings me to the end of my podcast. I have really enjoyed today's talk. Some things have become clearer in my head as well. My muscle memory is also performing at a rapid pace. But mera time yahi tak ka tha. I'll come back to you very soon with a new topic. Till then, you know what to do with yourselves. Take very good care, of course. Take very good care of yourselves. Keep listening to Tune India Radio, and I'll be back some other day. Bye for today.
1: Tune your weekdays morning with Breakfast Show at 8 a.m.